फिर अगर ये लोग तुमको झुठला रहे हैं तो तुमसे पहले बहुत से पैगंबर खुली हुई निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आ चुके हैं कि उनको भी झुठलाया गया था। हर शख्स को मौत का मजा चखना है और तुमको कयामत के दिन तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोजख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ए अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News
3: Brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान
5: पेट्रोल जे गन में लगातार वाद बाद वफा के हुकूमत पारा मुल्क में सिमार लॉकडाउन लगाने ते गौर सरकारी निजी इदारन में ट्रेडी मोकल जी
6: पीक लग गई और लाइफ कुछ ज्यादा ब्लू जोन्स में ट्रिप्स और यांगो प्रो के साथ
5: आज भी ग्राउंड कयो विंदियो जुमो छंछर आचर मोकल हुंदे सरकारी मुलाजमन के रोटेशन तहत ऑफिसन में घुराइण ते गौर हतमी फैसलो वजीर आजम की सदारत हेठ थींदड़ इजलास में कयो विंदो
7: वफाकी हुकूमत से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी शिपमेंट है ये कौन सा जहाज है जो रात को उड़ता है और अगले दिन 11:30 पाकिस्तान पहुंच जाता है और वो कीमतें जो हैं बढ़ा दी जाती हैं इसलिए भी जो है इसके ऊपर खत्म की जाए फौरी तौर पर
8: पुट द रेजोल्यूशन टू द हाउस दोज हु आर फॉर द रेजोल्यूशन में से आए एंड दोज हु आर अगेंस्ट इट में से नो The I David and the resolution is carried.
9: हम इनकी भरपूर ताईद करते हैं रेजोल्यूशन की और हम वफाकी हुकूमत को हम गुजारिश करते हैं कि अगर जब तक आपके इंटरनेशनल हालात ठीक नहीं हमें आपकी मजबूरी पता है तब तक आप लेवी को खत्म करें ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना हो
10: इनके हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा है मेरा ख्याल इनको ये डर होगा कि मुखालफत के ऊपर से इनकी नौकरियां खत्म हो जाए

फेस स्कीम इस्लामाबाद में शुरू थी वही आए बे मुल्क में भी जल्द शुरू थी वेंदी वजीर आजम जो पेट्रोल से रिलीफ दिनो आए वो टैक्स का वधिक आए जंग खत्म थन सा समूरे दुनिया के रिलीफ मिलनो सिंध के घरों खाते हथियार अंजाल नवा लाइसेंस जारी करण ते मुकम्मल पाबंदी मुड़ी छी नवा आर्म्स डीलरशिप लाइसेंस जारी करण ते भी पाबंदी लागू घरों खाते के तर्जुमान मूजिब पाबंदी फौरी तौर लागू हूंदी जैदड़ हुकुम ताएं बरकरार रहंदे का भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी हथियार जो नओ लाइसेंस जारी हथियार लाइसेंस जारी करण की इजाजत डिनी सकबी अज फिजाई अंदन में दाखिल थियण की कोशिश कदड़ रूसी ड्रोन के तबाह किया वो है सऊदी फौजी इतिहाद के दवा तर्जुमान तुर्की अल मालकी चवण है तो ड्रोन के मके वेझो फिजाई हंधन में दाखिल थियण खां अॻी रोके तबाह कयो वियो बिन्ही मुक़दस मस्जिदनि जो तहफ़ सुर्ख लकीर आहे हुसिन तरफ़ां मका खे निशानो बणाइण जी ॿी कोशिश हुई हुसी ख़िलाफ़ ज़रूरी क़दम खया वेंदा पाकिस्तान जी सऊदी अरब ते हुसी हमलनि जी सख़्त मज़म्मत पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम अफ़्सगार अमन जो गॾियल क़ौमुनि जे सलामती काउंसिल जे इजलास खे ख़िताब कंदे चवणो हो त सऊदी अरब जी ख़ुदि मुख़्तियारी इलाइक़ाई सालमियत ऐं सलामती जे मुकमल हिमायत कयूं था

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज।
2: मैदो दुरुस्त ता इंसान तंदुरुस्त।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे
2: ऐ समूरा लिकल लकावा सामू अची विंदा

साईं जा जेके अखियूं कुझु ॾिसनि थियूं तन खे क़बूल कनि थियूं या रद्द कंदियूं आहिनि। असांजी पूरी हयाती में के शयूं अहिड़ियूं बि साम्हूं ईंदियूं आहिनि जिन खे काल्ह पसंदि कयो वियो ऐं सुहिणियूं लॻियूं, से अॼु वणनि ई कोन थियूं। जेकी शयूं असांखे सुहिणियूं न पई लॻियूं, से अॼु ख़ूबसूरत छो पियूं लॻनि? उन ई सवाल जो जवाबु ई थी सघे थो त ॾिसण वक़्तु ज़हन जी कैफ़त कहिड़े क़िस्म जी आहे। हूअं बि कंहिं ॾाहे जो चवणु आहे त ख़ूबसूरती इंसान जे अंदर में मौजूद हूंदी आहे, उन में को बि शक नाहे। छो त जॾहिं इंसान जे ज़िन में ख़्याल सुठा हूंदा त संसार बि सुठो लॻंदो, ऐं हिन संसार में अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेकी हर शइ में सूंहं खे ॾिसंदा आहिनि ऐं कख हुजे पन हुजे हर हिक में सूंहं जो जलवो ॾिसनि था। ऐं जॾहिं हर शइ में सूंहं जी समझ अची वञे थी त पोइ दिलि बि हरदम ख़ुशि रहंदी आहे। इहा ॻाल्हि आहे अखियुनि जे ॾिसण जी।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जी एसमिन प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां के सवाल नोट कराईंदासीं त असांजो जेको अॼु जो सवाल आहे उहो सवाल इहो आहे त कराची खां यानी हैदराबाद जा मशहूरे ताईं रोड जो पुराणो नालो कहिड़ो हुयो ऐं हिन वक़्तु हुन नओं नालो कहिड़ो आहे। जी हा, सवाल तमामु आसान आहे, कंहिं खां पुछा गछा करे सघो था ऐं मालूमात पहिरीं पहिरां दोस्तनि खां वठी सघो था। त असांजो अॼु जो सवाल आहे कराची खां जाम शुरु हैदराबाद ताईं जेको रोड आहे उन जो पुराणो नालो कहिड़ो हुयो ऐं नओं नालो कहिड़ो आहे। तव्हां असांखे सवाल जो सही जवाब SMS ज़रिए मोकिले सघो था। असां वटि खे SMS करण जो आसान तरीक़ो आहे। तमामु जेके दोस्त प्रोग्राम हाणे ॿुधनि पिया या जेके जिन रेडियो खे ज्वाइन कयो आहे पहिरियों दफ़ो, त असां हुनखे ॿुधाईंदासीं। मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, राइट ऑप्शन में वञी करे LRK लिखी यानी लाड़काना LRK स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो, पंहिंजे घोठ नालो

लिखी करे तव्हां पंहिंजो सवाल सेंड कजे फेसबुक जे आई डी ते बि सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। असांजी आई डी आहे GFM88 जो जेको फेसबुक पेज आहे, तव्हां उन ते बि असां पंहिंजो सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। ऐं फिक्स 10 बजे असांजे स्टूडियो में मोबाइल आन थींदी, तव्हां उन ते बि पंहिंजो सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88, नंबर तमामु आसान आहे 0332-1322-88। असांजो सवाल इहो आहे त कराची खां जाम शोरो यानी हैदराबाद ताईं रोड जो पुराणो नालो कहिड़ो हुयो ऐं हिन वक़्तु नओं नालो कहिड़ो आहे। नंढड़ा ॿार ॼावल ॿार जेके आहिनि अल्लाह ताला जो तोहफ़ो हूंदा आहिनि ऐं हर शादीशुदा जोड़ो औलाद बिना अधूरो हूंदो आहे। ॿार नाज़ुक गुल आहे ऐं ॿारनि सां हर कोई प्यार कंदो आहे ऐं हर माइट चाहींदो आहे त हुन जो औलाद साबरीन ऐं ज़हीन इख़लाक वारो ऐं सुठे कम में होशियार हुजे। काफ़ी हंधनि ते ॾिठो आहे त ॿार जी तरबियत थोरी घटि कई वेंदी आहे, किथे वधीक कई वेंदी आहे। कुझु ॿारनि में सलाहियतूं घणी, पर ॿारनि सां प्यार आहे ऐं ॿार तमामु जेको आहे सो प्यार वारे सां वधीक पंहिंजो चाहींदे वीचारनि खे थी। पर असां जूं हमेशह सभिनी शादीशुदा जोड़नि लाइ दुआऊं हूंदियूं, पंहिंजी झोली भरे ऐं उन जे हमेशह दिलनि मां उन जी ज़बान मां सुठी दुआ ॿार ॼमन, हुन खे ख़ुशियूं अथनि, हुन जी औलाद हुन जी ख़िदमत कंदी। पर असांजो बि हमेशह सभिनी शादीशुदा जुड़नि लाइ अलाह से हुन खे औलाद सां नवाज़ी।

जीअं सुभाणे प्रोग्राम रोशन सुबुह में असांजो सवाल तमामु आसान आहे, उमीद तव्हां नोट कंदो। असांजो सवाल आहे कराची खां जामशोर हैदराबाद ताईं जेको रोड आहे उन जो पुराणो नालो कहिड़ो हुयो ऐं हिन वक़्तु उन जो नओं नालो कहिड़ो आहे। जीअं त समिन तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठगी ताईं। हिन वक़्तु असां रहंदासीं न्यूज़ ब्रेक ऐं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़, वरी वापसि ईंदासीं। कॾहिं

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी।
7: एक वधीक पेट्रोल बम कहराए छो। पेट्रोल 4 रुपया 10 पैसा मांगो। डीजल फी लीटर अग में 6 रुपया 41 पैसा वाद कई वही। लीटर अग 384 रुपया 34 पैसा थी वो। डीजल जो नव अग 415 रुपया 83 पैसा अग लाए। पेट्रोलियम डिवीजन पारा नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल के अघन में बाद वफाकी हुकूमत पारा मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन लगान ते गौर। सरकारी और निजी इदारन में 3 दिन मोकल की तजवीज। कारोबारी मरकज भी हफ्ते में 3 दिन बंद रखने जो फैसलो। अज सरकारी गाड़ियों भी ग्राउंड क्यों वेंदी। जुम्मो छंछर और आचर मोकल हूंदी। सरकारी मुलाजमन के भी रोटेशन तहत ऑफिसन में घुरान ते गौर। हतमी फैसलो वजीर आजम की सदारत हेठ थीदड़ इजलास में किया वेंदो।

हुकूमत पारां पेट्रोल ते अवाम खे ॾिनल रिलीफ टैक्स खां वधीक लेवी 80 रुपया ॾिनो आहे। वफ़ाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक चयो आहे त मुल्क वॾनि गाॾियुनि वारनि जो बि आहे, पर वज़ीर आज़म सभ खां पहिरीं नंढनि गाॾियुनि वारनि खे रिलीफ ॾिनो आहे। पेट्रोल ते रिलीफ वारी स्कीम इस्लामाबाद में शुरू थी वई आहे, ॿिए मुल्क में बि जल्द शुरू थी वेंदी। पेट्रोल ते रिलीफ खां वधीक आहे। जंग ख़तम थियण सां समूरी दुनिया खे रिलीफ मिलंदो।

0: ऐं काज़ी बाद बाहि लॻी वई। हिकु ड्राइवर सड़ी फोत संदसि भाउ खे बाहि लॻी वई। मियांवाली वासी ट्रालर ड्राइवर मंज़ूर गांगो फोत थी वियो। संदसि भाउ इफ्तिखार ज़ख़्मी फायर ब्रिगेड जी मदद सां बाहि विसाए लाश ऐं ज़ख़्मी खे कढियो वियो। पुलिस मूजिबि पंजाब वेंदड़ ट्रालर अॻियां वेंदड़ ट्रालर सां पोयां खां टकराइजी वियो, जंहिं बाद ट्रालर खे बाहि लॻी वई।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
5: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
6: GFM 91.6।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

जी हा समय प्रोग्राम रोशन सुबह में असो अज जो जो सवाल है सवाल तमाम आसान है त कराची का यामशरो हैदराबाद तई जो रोड है उन जो पुराणो नालो कहड़ो हो इन वक्त उन जो नओ नालो कहड़ो है। सवाल तमाम आसान है तुम असा के एस एम एस जरिए बुधा सको तुम असा के फेसबुक जरिए भी असा के बुधा सको तुम असा के मोबाइल नंबर से भी कॉल कर सवाल जो जवाब नोट कराए सको नंबर है 0333221322888।

0: आप सुन रहे हैं
1: जी
0: एफ एम एम एफ एम
2: जीरो इकहत्तर टेवीह ॿ सौ छवीह चोएतालीह सालनि जो तजुर्बो हज़ारे मरीज़नि जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठाण डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद चोएतालीह सालनि जे वसी तजुर्बे सां हर क़िस्म जा आसाबी अमराज़ जोड़नि जो सूर मैदे में जलन गैस बदहज़मी तेज़ाबियत गुर्दनि जी पथरी बवासीर बे औलादी वारनि जो किरण गंजपण फॉलेज ख़ारिश ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ सिहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसिर इलाज फराहम करे रहिया आहिनि। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर पुलिस हेडक्वार्टर चौक पुलिस लाइन सखर टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबुह 10 वगे खां शाम 5 वगे ताईं अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 03-26-22-00-440
3: तहज़ीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज GAFM 88 की आवाज
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। FM 88 नेटवर्क

जी असम में प्रोग्राम रोशन सुबह बुध पे जी एफ एम 88 के नेटवर्क तमाम जो मेजबान नेमत अल्लाह जुणे जो साईं मुंहिंजा हुसन अहिड़ी ज़ात आहे जंहिंखे हर कोई पसंद करे थो पोइ हुन जी उमिरि केतिरी बि छो न हुजे भला हुसन खे छो न पसंदि कबो चवंदा आहिनि त जंहिंजो अंदरि हसीन हूंदो आहे उहो हुसन खे पसंदि कंदो आहे ऐं साईं हुसन आहे छा हर माण्हूअ जे अखि जी अलॻि अलॻि परख आहे ऐं तहक़ीक़ी ज़रिए इहा ॼाण हासिल कई वई आहे त ॿारड़ा पैदाश खां वठी हुसन परस्त थियनि था जंहिं जे करे संदन खूबसूरत शिकिलनि ॾांहुं वधीक लाड़ो हूंदो अथनि ऐं अहिड़ी कयल तहक़ीक़ मां उन ॻाल्हि जी ॼाण बि हासिल कई वई आहे त ॿारड़ा बि आम माण्हुनि जीअं हुसन परस्त हूंदा आहिनि नफ़्सात जे माहिरनि जो चवणु आहे त तव्हां ॿारनि लाइ तमामु घणियूं शयूं या शिकिलियूं ॾेखारियो पर ॿारड़ा सिर्फ़ उन दिल खे वणंदड़ शकिलनि खे शयुनि खे पसंदि कंदा ऐं उन्हनि जे तरफ़ ई जो कंदा जंहिंखे जेके सुहिणा हूंदा उनखे उहा ॻाल्हि वणंदी ऐं उहे सुहिणियूं शयूं हूंदियूं सुहिणियूं तस्वीरूं हूंदियूं त ॿारड़ा बि उनखे ई सुञाणींदा ऐं उनखे सुञण जी सलाह बि रखंदा त हसीन शइ अहिड़ी आहे हुसन अहिड़ो आहे जंहिंखे ॿारड़ा बि पसंदि कनि था पर हुसन वारी शइ हर कंहिंखे वणंदी आहे।

जी समी जा प्रोग्राम रोशन सुबह में असी अवां के सवाल नोट करायासी त कराची खां हैदराबाद जाम शुरुआत जो रोड आहे उन जो नालो पहिरियां कहिड़ो हो पुराणो नालो ऐं हिन वक़्तु नओं नालो कहिड़ो आहे त समी जा इन जो सही जवाब आहे कराची खां जाम शुरू ताईं पुराणो नालो सुपर हाईवे हो ऐं हिन वक़्तु M9 मोटर हाईवे रोड जो नालो आहे इहो सवाल जो सही जवाब तकरीबन दोस्तन सवाल जो सही जवाब नोट करायो ऐं असां हुननि जा नाला खणंदासीं इन में असां पहिरियों नंबर ऐं आख़िरी नंबर कोन रखियो आहे हिन दफ़े ऐं असां पंहिंजो सवाल जो सही जवाब ते सभिनी दोस्तनि जा नाला शामिल कंदासीं दोस्तनि जी वॾी महिरबानी जिन असांजो ॿिनि कलाकनि ताईं साथ ॾिनो ऐं असांजे प्रोग्राम खे ॿुधो ऐं असांजी खोजना करे महिनत करे जुस्तजू करे सवाल जो सही जवाब ॾिनो आहे यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फ़कीर एजाज़ अली कलोड़ो ऐं नारा स्टॉप सब्ज़ी मंडी सखर खां एजाज़ अली जूणीन जो ऐं ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांद ॻोठ हसू जतोन खां मोहम्मद मूसा जतोई ऐं ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर ज़मीर सोलंगी आसिफ अली चाचड़ ऐं वासिफ अली बुगटी लाड़काणे खां खुआरो लाड़काणे खां यासमीन मलिक मीरपुर ख़ास खां अब्दुरहमान लगारी लटको मोरी खां कंधकोट ATC कोरट खां सेन सी असांखे सवाल जो सही जवाबु ॾिनो हुननि यादि कयो हुन जी वॾी महिरबानी रांझन कोरी ॻोठ मीरपुर ख़ास खां ख़ालिक लाशारी ऐं इक़बाल लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ास खां अहसान अली बुगटी ॻोठ रोहल बुगटी लाड़काणे खां रुस्तम अली पांवर ॻोठ पुनू खान पांवर सेवण खां मोहम्मद शरीफ़ छुटो दरेजी बलोचिस्तान खां मारम अली जतोई ॻोठ आगा खान जतोई खां फतेह मोहन सुमरो फतेह मोहम्मद कनासरो ॻोठ नवाज़ धूण खां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी ऐं साईं जा सवाल जो सही जवाब ॾिनो आहे अमीर हुसैन मीराणी साईं तारिक हुसैन मीराणी नौंदरो चौक लाड़काणे खां डॉक्टर शहज़ाद अज़ीज़ सुमरो रियाज़ हुसैन कलोड़ो ॻोठ फाज़िल कलोड़े खां ऐं हाफिज़ ग़ुलाम अहमद सांभल शहर नसीराबाद खां अब्दुल मजीद बुगटी बि असांजे काल पंहिंजो फेसबुक ते मैसेज कयो बरकत अली जमाली आहे बलोचिस्तान खां मोहम्मद खान कुंभार हालेपुटा स्टाफ मीरपुर ख़ास खां अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ास खां क़ुर्बान अली ख़ासकेली अज़ीज़ सोलंगी क़ुर्बान ख़ासकेली महिरबानी लख क़ुर्ब ऐं जेको हीउ कलाम आहे आख़िर में अव्हां सभिनी दोस्तनि जे नाम पिया कयूं।

जी हा साईं, मुंहिंजा इहा हक़ीक़त आहे त मिठो अंगूर आहे मुंहिंजो जानी, हुसन में ज़ोर आहे मुंहिंजो जानी। फरज़ाना परवीन जे नगमे ते प्रोग्राम जी पुॼाणी ते हयाती बख़ैर इनशाला अवां सां मुलाक़ात ज़रूर थींदी नए सवाल सां। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान नेमतला जुड़ण जो ॾींदा इजाज़त। अलाह निगाहबान।

0: Popcorn International.
1: Well, kids.
2: तफ़सील अवामी सतह ते नाहिन ॿुधाया वेंदा। इतिहाद में वाद बाबति फ़ैसिलो ॾिनी मुल्कनि जे क़यादत कंदी। अरब टीवी खे ॾिनल इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ असांजा इरादा जारहणा न आहिनि। दिफ़ाई सलाहियतनि ते भरोसो आहे। दिफ़ा करण सां गॾु सज़ा ॾियण जी बि सघ रखूं था। अफ़गानिस्तान बाबति बि मौक़िफ़ वाज़े आहे। अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल न थियणु घुर्जे। हुसीन जूं सऊदी अरब ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी। सऊदी अरब पारां फिज़ाई हदनि में दाख़िल थींदड़ ड्रोन तबाह करण जी दावा। सऊदी फ़ौजी इतिहाद जो चवण आहे त यमनी हुसीन जो ड्रोन खे मके जी फिज़ाई हदनि में तबाह कयो वियो। पाकिस्तान पारां सऊदी अरब ते हुसीन जे हमलनि जी मज़म्मत। गॾियल क़ौमनि में पाकिस्तान जे नुमाइंदे आसिम इफ़्तिख़ार चयो त पाकिस्तान सऊदी अरब जे ख़ुदमुख़्तियारीअ जो हामी आहे। हुसीन जा हमला इलाक़ाई अमेरिकी कांग्रेस ईरान जंग जे ख़ात्मे बाबति ठहराउ टियों भेरो बि मंज़ूर करे वरितो। ठहराउ जी हिमायत में 220 वोट पिया, 204 मुखालफ़त वोट कयो। रिपब्लिकन पार्टीअ जे 7 मेंबर्स बि ठहराउ जी हिमायत कई। ईरान ख़िलाफ़ वधीक कार्रवाई रोकण वारो ठहराउ टियों भेरो अमेरिकी कांग्रेस मंज़ूर कयो आहे।

मरहले में दाखिल थी वेंदी। अमेरिकी नायब सदर जे डी विन चयो आहे त ईरान जंग जो पहिरियों मरहलो ईरानी एटम प्रोग्राम ऐं फ़ौज जी तबाही हो जेको मुकमिल करे छॾियो आहे। बियो मरहले ईरान खे बहालीअ खां रोकण वारो आहे जंहिं ते अमल कयो वेंदो।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check do you buy?
2: White-ish beauty cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोले पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जा ब कतरा जरूर प्यारो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इनन जे ख्वाबन के

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: नेटवर्क से जुड़ा
1: GFM88 नेटवर्क सिंध की आवाज। It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram, ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो बुधंदा रहो। अभी बुधो प्या ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Har bar ja nandra kadam ik nayi duniya da vadhan ta, par polio inan kadman ke roke bhi sage tho. Inhiye kare jadhein bhi polio muhim dauran polio workeran ji dastak the ta dar kholyo ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
3: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: दिस प्रोग्राम इज़ ब्रॉट यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कम्प्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
3: GAFM 91.6।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मठियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: Express PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow

मके दिफ़ाई मुआदो जाराणो न पर दिफ़ाई नोत जो आहे। दिफ़ाई वाइदनि जा ऑपरेशनल तफ़सील अवामी सतह ते नाहिनि ॿुधाया वेंदा। इतिहाद में वाद बाबति फ़ैसिलो ॾिनी मुल्कनि जी क़यादत कंदी। अरब टीवी खे ॾिनल इंटरव्यू में डी जी आई एस पी आर जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त कंहिं बि मुल्क जो आहे दिफ़ा कर सज़ा ॾियण जी बि अफ़गानिस्तान वाज़े आहे। अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल न थियणु घुर्जे। हुसिन जूं सऊदी अरब ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी। सऊदी अरब पारां फिज़ाई हदनि में दाख़िल थींदड़ ड्रोन तबाह करण जी दावा। सऊदी फौजी इतिहाद जो चवण आहे त यमनी हुसिन जे ड्रोन खे मके जे फिज़ाई हदनि में तबाह कयो वियो। हुसिन पारां इंतज़ाम जी अमेरिकी कांग्रेस ईरान जे ख़ात्मे बाबति ठहराउ टियों भेरो बि मंज़ूर करे वरितो। ठहराउ जी हिमायत में 220 वोट पिया, 204 मुखालफ़त में वोट कयो। सदर ट्रम्प जी रिपब्लिक पार्टीअ जे 7 मेंबर्स बि ठहराउ जी हिमायत कई। ईरान ख़िलाफ़ वधीक कार्रवाई रोकण वारो ठहराउ टियों भेरो अमेरिकी कांग्रेस मंज़ूर कयो आहे। ईरान जंग जल्द नए मरहले में दाखिल थी वेंदी। अमेरिकी नायब सदर जे रिविन चयो आहे त ईरान जंग जो पहिरियों मरहलो ईरानी एटमी प्रोग्राम ऐं फ़ौज जी तबाही हो जेको मुकमिल करे छॾियो आहे। ॿियों मरहले ईरान खे बहालीअ खां रोकण वारो आहे जंहिं ते अमल कयो वेंदो। खिते जे मुल्की पारां पंहिंजे मुस्तक़बिल बाबति फ़ैसिलो करण वारे हक़ जी हिमायत कयूं था। चीनी फ़ौज इलाइक़ाई इस्तक़ाम जे तहफ़ लाइ समूरनि धुरियुनि सां गॾिजी कम करण लाइ तयार आहे। चीन जे दिफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त चीन ॾियारींदड़ कार्रवाईनि जी कंहिंखे बि इजाज़त न हुअणु घुर्जे। फ़ौजी ताक़त सां मसला हल नाहिनि था थी सघनि। तरह सऊदी अरब पारां मिस्री सदर ऐं सऊदी वली अहद शहज़ादान विच में मुलाक़ात ॿिनि तरफ़नि लाॻापन समेत खिते जी सूरत लंगन खे बि आज़ाद रखण वारे मामले ते पीडीआई बानी जे अस्पताल मुंतकिली वारे केस जी ॿुधणी आईनी अदालत जे हुकुम ते अटॉर्नी जनरल खां मुआविनत तलब। जस्टिस शाहिद वहीद रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त आईन जी तशरीह खां सवाइ समूरा मामला सुप्रीम कोर्ट वटि आहिनि। जेको ऑर्डर आईनी अदालत कयो आहे छा उहो असां ते लागू थिए थो? आईनी अदालत ऐं सुप्रीम कोर्ट जा इख़्तियार आईन में जेल इंतिज़ामिया खे अजाती हैसियत में तलब।

0: लाश हथायो आहे। सुञाणप न थी सघी आहे। ॻोठाणनि जे इतलाउ ते पुलिस लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस मौजूदु वधीक जांच करे रहिया आहिनि। नगर पार्कर भरसा नारी ऐं नौजवान जा वण में टंगियल लाश हथ ॻोठ सोराचंद में किर्शन ऐं नारी मरवा कोलीअ जा वण में टंगियल लाश मिलिया आहिनि। इलाइक़े में चौबोल आहिनि त नारी ऐं नौजवान हिक ॿिए खे पसंदि कंदा हुआ। परणो न थियण सबबि गॾिजी आपघात कयो आहे। पुलिस लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले करे छॾिया। ॾेरकीअ मां 10 ॾींहं अॻु मुबैना तौर अगवा थियल 14 वरनि जी नारी पंजाब मां बाज़ियाब। मंज़ूरा खोसो खे ॾेरकी पुलिस पंजाब जे सादकाबाद मां बाज़ियाब करायो। मंज़ूरा खोसो मूजिबि असलम कोच समेत जवाबदारनि हथियारनि जे ज़ोर ते केस अगवा कयो हो। पुलिस मूजिबि वाक़े में मुलक जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। कलोई वेझो सीआईए पुलिस थरपारकर जो छापो। मनशियात रखण जे इल्ज़ाम हेठि हिकु ॼणो गिरफ़्तार। पुलिस वंगो पतण जे कार्रवाई कंदे मनशियात रखण जे ॾोह में अक्रम हालो खे गिरफ़्तार कयो। हाला बिरादरी जे पुलिस सां चकरियूं। गिरफ़्तार शख़्स आज़ाद कराए वरितो। पुलिस चढ़ाई ख़िलाफ़ सरकोल रोड ते धरणो। पीर जो ॻोठ में बदमनी ख़िलाफ़ शहरियुनि जो एहतजाज। टायरनि खे बाहियूं थाणे आॾो धरणो। शहरियुनि तरफ़ां वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ टायरनि खे बाहियूं ॾेई थाणे आॾो एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरीन मौजूदु पीर जो ॻोठ शहर ऐं भरपासे में बदमनी चोर चढ़ियल आहे। शहर में अमुन बहाल करायो वञे। बंगोबाइण मां 8 वरनि जो नीगर पुरस्कार। नमूने गुम वारसन पारां अगवा जो शख़्स ज़ाहिर जलाल जे चौदगी स्टाफ वटां नीगर सरफराज मजीदाणो पुरस्कार नमूने गुम थियो। मुख़्तियार मजीदाणो मौजूदु पुट कल घरां निकिरी वियो हो, जंहिंखां पोइ घर वापसि न आहे मोटियो आहे त पुट खे अगवा कयो वियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी। खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई। अखबल माशुमानुता द पोलियो द मखनीवी दो सास की वरकवल महेरवई। जकच हम दग सास की द माशुमानु द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सगे थो. इन्हीं करे जडे भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो. छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उडाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
3: Bank Islam ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
3: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
6: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
7: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
6: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: बाबू भाई बनना मुझे सार है। बाबू भाई

0: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Sona Yulia Granular.
5: हम सऊदी अरब सां कुलो कुले में मिलाए बीठल आहे असांजो खितो तकरारन जी घरी कीमत अदा करे रहियो आहे धुरियूं सबर जो मुज़ाहिरो कनि ऐं वधीक सिकताण खां पासो कनि मका दिफ़ाई मुआदो जाराणो नंबर दिफ़ाई नोट जो आहे दिफ़ाई वाइदनि जा ऑपरेशनल तफ़सील अवामी सतह ते न आहिनि ॿुधाया वेंदा इतिहाद में वाद बाबति फ़ैसिलो टिनी मुल्कनि जी क़यादत कंदी अरब टीवी खे ॾिनल इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी चयो आहे त कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ असांजा इरादा जहराणा न आहिनि दिफ़ाई सलाहियतनि ते भरोसो आहे दिफ़ा करण सां गॾु सज़ा ॾियण जी बि सघ रखूं था अफ़गानिस्तान बाबति मौक़िफ़ वाज़े आहे अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल न थियणु घुर्जे कुसी जूं सऊदी अरब ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी सऊदी अरब पारां फिज़ाई हदनि में दाख़िल थींदड़ ड्रोन तबाह करण जी दावा सऊदी फ़ौजी इतिहाद जो चवण आहे त यमनी हुसैन जे ड्रोन खे मके जी फिज़ाई हदनि में तबाह कयो वियो हुसैन पारां मके ते हमले वारे

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: मुआजिज़ों के बादशाह से है तुम्हारी उम्मीद, मुआजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। तमाम खूबसूरत मासूम वही सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरखलू धुओं के समंदर चादों की बारिश और आसवल खजानों के साथ दुआएं परसे पर तक आसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक मीं से जागता जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांस से तार तक हमसे खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मादली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट इश एंड डी इज कंप्यूटर शो। बिल्कुल जनाब, से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रावण से प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें की जाएंगी और जनाब आप लोगों को बताया जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए, आपकी जिल्द के लिए और आपके लिए कितना ज्यादा और क्यों जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए मौजूद है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश, जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में न सिर्फ इजाफा ला सकते बल्कि अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते, क्योंकि खूबसूरत रहना और खूबसूरती की हिफाजत करना दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, पुरकशिश बनना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। इस प्रोग्राम में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वाली बातें होंगी, आप लोगों को गाने सुनाए जाएंगे, आप लोगों के साथ मजे किए जाएंगे और जनाब एंटरटेनमेंट का फुल वाला डोज दिया जाएगा, जो कि साथ की अगर बात की जाए तो साथ रहेगा ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक मियां के साथ, आप हमारे साथ। बिल्कुल जी, तो आपको वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ जरा अपनी हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत की फहालत कैसे ही आपकी हालत, उम्मीद अन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुबकुल मूड के साथ सुबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली है। आपको पता नहीं जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ पूरे 2 घंटों का, पूरे 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं इन्नी शाली बातें। और इसी के साथ साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं, सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी आंटियां अमियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 और किस्मा लाने का काम करेगी भाई जानिए सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 और किस्मा लाते और यहाँ पर ऐसा करते ही आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आगे से प्रोग्राम किया जाएगा और प्रोग्राम में आगाज के फौरन बाद ही जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होंगे तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। सो आप सुन रहे हैं व्हाइट इश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो आइए जी एक बहुत प्यारा सा जरा कलाम एंजॉय करते हैं, तो साथ रहिए और साथ दीजिए पूरे 3 बजे तक।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

बिल्कुल आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से लोग मौजूद हैं जनाब। प्रोग्राम में आप लोगों को वेलकम कहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो किस तरह से आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं वो भी जरा आप लोगों को बताएंगे, और इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या होने वाला है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले जो चीज बताने वाली है वो ये कि भैया आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज जो आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा वो हाँ जी पहेली होगी। ओके, तो आज की जो पहेली होने वाली प्रोग्राम की वो बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताएं ऐसी क्या चीज है जिसके दांत बहुत हैं लेकिन वो खा नहीं सकती। हाँ जी, ये क्या चीज हो सकती है जिसके दांत तो बहुत है लेकिन वो खा नहीं सकती। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो जनाब तरीकेकार बहुत ज्यादा आसान है। अपना सेल फोन उठाइए और कॉल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर सुनने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 के पेज पर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। इससे ये होगा कि बहुत सारे लोगों तक हमारा प्रोग्राम पहुंच जाएगा और बहुत सारे लोग जो है ना वो जान जाएंगे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम उनकी स्किन के लिए कितनी और क्यों जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी थोड़ी सी मालूम आप लोगों को होनी चाहिए, थोड़ी सी क्या मतलब बहुत ज्यादा वाली मालूम होनी चाहिए कि अगर आप मार्केट चले जाएं तो बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करके आएंगे, क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी हो जाता है कि जब आपके करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल नहीं होगी तो दुकानदार बोलेगा भाई साहब कुछ और ले जाएं, कोई दूसरा प्रोडक्ट ले जाएं, ये ज्यादा अच्छा है, इसका ज्यादा आजकल चर्चा है। तो आपने उसे बोलना है भाई साहब थांबा थांबा, हम सिर्फ डी परचेज करने आए हैं, क्रीम ही परचेज करके जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो जनाब जल्दी से परचेज कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना ये अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुरी 312 50-25-970 यो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुरी 312-73-84-309 ही नंबर साइन जेके डायल करी तां पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सगो था। सो अवेलेबल करायो, पांजे खूबसूरती जो ख्याल रखो, हमेशा हमेशा जिला खूबसूरत थी वने, छो तो खूबसूरती हासिल करण अजकल डाडी आसान थी वई है, तमाम भी बाबा उन मां फायदो हासिल करियो एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमाल कंदा रहो, ठीक आहे। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के लिए जो है ना वो बहुत सारे फायदे लेकर आई है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है। 2-in-1 फार्मूला मतलब अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट जो मिलने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल वाले मिलने वाले हैं, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, तो आपकी स्किन के अंदर जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं ना वो इतने अच्छे मिलेंगे कि आपको लगेगा कि भाई आप बहुत अच्छा कोई महंगा सा फेशियल करा के आए हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये सारी क्वालिटीज मौजूद हैं कि आपके चेहरे को एकदम से खूबसूरत बना दे, प्यारा बना दे और पुर

स्पेशलिस्ट भी बना दे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी खास बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है। तो घबराने की और टेंशन करने की तो कोई बात है ही नहीं कि भाई हमारी स्किन सेंसिटिव है, हमारी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है, हम नहीं लगा पाते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखिए, और जना मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल करानी बाकी रहती है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। और अब तो भाई मार्केट में डी स्किन का फेस वॉश भी आ चुका है, फेस वॉश ने भी एंट्रियां मार ली हैं, तो वो भी आप परचेज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। क्योंकि फेस वॉश जो है ना, ऐसा कोई फेस वॉश ताकि हमारी जो खूबसूरती है ना वो भी जरा अच्छे से निखर कर सामने आ जाए, क्योंकि कई मरतबा हम इन चीजों को समझ नहीं पाते कि कौन सी चीजें हमारी स्किन के लिए बेहतर है और कौन सी चीजें हमें अपनी जिंदगी में अवॉइड करनी चाहिए। तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ जी, फुल मोकल आ तवां के, तो लगाईंदा रहो, ये असांखे ॿुधाईंदा रहो तो तव्हां किथे किथे अप्लाई कई आहे, अच्छा किथे किथे अवेलेबल कराई आहे, तव्हां अप्लाई कई आहे या फिर कोन। अच्छा, सवाल जेको पुछो आहे न, सवाल जो तव्हां मूंखे जवाब ॾींदा हलो, ऐं जल्दी जल्दी असांजे प्रोग्राम जो हिसो थींदा हलो। जिन माण्हुनि हाणे ज्वाइन कयो आहे हुननि खे ॿुधाईंदासीं, बाबा खे ॿुधायो साथ फरवा गुल मौजूद है। कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय आप यार कैसी हैं, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, बहुत शुक्रिया जी, आपको भी वेलकम। कहते हैं नजीर खुसो हमारे प्रोग्राम में बलूचिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं, कहते कि किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो, अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार है ही नहीं बल्कि वो जरूरत का पुजारी है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, फहीम शेख हमारे साथ है, कहते हैं विसरे सारो लोग शालन न विसरे तू, तो केडो मुंह सांढियो आहे साह में। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, अदा छा हलाए खुशायो, सफ़ा चाक सलेट कलम मस्त जी दवी असां भी रुलंदा फिरंदा नेट अची वियासीं, प्रोग्राम तो लाजवाब आए हमेशा जी आवा वांगे, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, आपको भी खुशियां में दी। अच्छा, फरवा कहती आप ही अर्ज किया है, मैं चाहूं भी तो वो अल्फाज ना लिख पाऊं जिसमें बयां हो जाए कि मैं कितनी आपकी इज्जत करती हूं दिल से। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, साजिद खान, अच्छा साजिद अली कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैफा हाल प्रोग्राम, माशाल्लाह माशाल्लाह, सदरा मुस्कान, थैंक यू जी, थैंक यू, आपको भी वेलकम हो गया। मुजाहिद मलिक लिखते हैं कि फाइनली आ गई सिडो, बड़ा वेट करवाती हो, आरतू जीशान का सॉन्ग मेरा रांझना सुना ना मानो बिल्ली, अच्छा सुना दो मानो बिल्ली, को बोल रहे हो मानो बिल्ली मत बोले गाना मेरा रांझना शायद कल ही तो हमने सुना था, आपने नहीं सुना था क्या, अपनी पसंद का गाना नहीं सुनते हो, फरमाइश पे क्यों करते हो। अच्छा, ये मोहम्मद जमान हमारे साथ कहते हैं गुड आफ्टरनून, स्वीट बुआ जी वेलकम वेलकम कहते हैं, आपको भी लिखते हैं ऑसम शो, थैंक यू। अच्छा, मुजाहिद मलिक कहते हैं मैं घोटकी से सुनता हूँ रोज आपको, और अजहर भी आपको सुनता है, सलाम कह रहा है तुम्हें, और आपको अजहर को भी बोल दो, अच्छा वेलकम बोल दूं, ठीक है ठीक है, अजहर आपको भी वेलकम हो गया और मुजाहिद आपको भी वेलकम हो गया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, घोटकी में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगी। सालार सिकंदर हमें सुन रहे हैं, सालार सिकंदर आपको भी वेलकम हो गया। जिब्रान खान हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। कहते हैं लाडली पहचाना या भूल गई, जी आपको पहचान गई, आप बहुत अच्छे और पुराने लिसनर हमारे। अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा बहन कैसी हैं आप, आपका प्रोग्राम नाइस है, आपकी आवाज की क्या ही कहने माशाल्लाह, डी स्किन जरूर इस्तेमाल करेंगे और सॉन्ग सुनना चाहते हैं डेडिकेट अब्दुल रजाक मुश्ताक अहद। ओके ओके भाई, सबकी फरमाइशें लगाएंगे जी। जाहिद अली बुर्दी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं, दर्द दिल आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। कहती माय फेवरेट मोस्ट फेवरेट आरजे चंदा जानी, कैसी हो, वेलकम टू शो यू एंड मी। अच्छा समझ गई, बहुत शुक्रिया स्वीटी, आपको भी वेलकम हो गया, थैंक यू के साथ। और जिब्रान कहते हैं कि वैसे यहां से गुजर रहा था तो लाडली का शो नजर आ गया, सोचा एक फीडबैक कर दूं, अच्छा सोचा आपने, अच्छी सोची माशाल्लाह आपकी। चलिए, अब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी परचेज कीजिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती में लाए इजाफा और आपको बनाए इतना खूबसूरत कि आप बन जाएं खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश आपके लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर महर इरफान सियाल साहब भी हमारा शो सुन रहे हैं, कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम, ग्रेट होस्टिंग मैम आरजे, थैंक यू वेरी मच सर, आपकी ये मोहब्बतें हैं, आप प्रोग्राम सुनते हैं, फीडबैक करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर टाइम हुआ चाहता है जी, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएं, जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, प्रोग्राम सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी तीन बजे तक। टाइम हुआ है जी कमर्शियल का और उसके बाद आप जरा टॉपिक को फॉलो कीजिए।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

भैया की नजरें कितनी तेज है ना, कश्मीर भी थोड़ा सा हैरान हो जाती हूँ। मेरी लिसनर्स इतनी अच्छी बात है, लिसनर्स हैं।

आइए डी स्किन कर रहे हैं आप, लिस्ट में आइए जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वालों की लिस्ट में आइए। और जी साथ साथ नदड़ी की आवाज से लग रहा है तबीयत कुछ ठीक नहीं है, यूँ की नहीं, नहीं मैं बिल्कुल फिलफाट अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत दिनों के बाद शायद सुन रही होंगी इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा। और चाचा खालिद कहते हैं हाय सिद्रा कैसी हो, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं चाचा कैसे हैं। अच्छा ये हिदायतुल्लाह कहते हैं सलाम कैसी हो, ये सॉन्ग चलाना दिलबर बख्शी का, वैसे ये कॉपी सॉन्ग है तो आपके प्रोग्राम का वो क्या बोलती हो ना टेम्पो भी खराब नहीं करेगा। चलें ठीक हो गया, मैं देखती हूँ मुझे मिल गया तो लगा लेते, नहीं तो आप ऐसा कीजिएगा जरा मुझे लिंक शेयर कीजिएगा।

प्रोग्राम वाइजेशन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप लोगों तक नशर किया जा रहा है। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया जी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको बना देगी ऐसा खूबसूरत जैसी खूबसूरती आप हासिल करना चाहते थे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरती को पहचानिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रोबियल हैं, जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो जल्दी जाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए, खूबसूरत होते जाइए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी इन हो चुका है मार्केट में। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी परचेज कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती चाहिए वो भी मुकम्मल वाली। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए, आपके जल्द के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस्तेमाल करते रहिए और मुझे बताते जाइए कि आपके एरिया में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और हाँ, आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं।

अच्छा साजिद अली, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी, जामिन का गाना लगाएंगे और बहुत अच्छा वाला गाना लगाएंगे, ठीक है? चाचा कहते हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अपनी आवाज़ में सॉन्ग तो सुनाएं, मैं कोशिश

कोशिश करूंगी आपको गाना सुनाऊं। और कहते हैं कि हवाओं में, अच्छा ये वाला सुनना चाहते हैं, ठीक है जी। कोई दूसरा ना सुना दूं? अच्छा, नजर मोहम्मद भटिया में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आज मेरी पसंद का सॉन्ग चलेगा सनम आरवी, मैं कोशिश करती हूँ जी। और फहीम भाई कहते हैं कि पानी से प्यास ना बुझी तो मैं कदी की तरफ निकला, सोचा तेरी शिकायत बस कर दे। देश की ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल, शो आपकी तरह है, बहुत हम नूरियाबाद में है, ट्राम का सच्ची बता दे।

क्या बात है जी, क्या बात है। आपके कमेंट्स ऐसे धड़ाम धड़ाम आते जा रहे हैं, ऐसी पोस्ट को भी लाइक कीजिएगा। जाहिद अली बुर्दी कहते हैं ब्यूटीफुल एंड नाइस इवन शो सिर्फ 88% सदरा मुस्कान गुल गुलाब जो जियो करे से अल्लाह। अच्छा मोहम्मद अली खोसो भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलम अटियारी से आपने हमें ज्वाइन कर दिया, बहुत शुक्रिया। चौधरी कश्यप चौधरी कहाफुल्ला मेथलो हमारे साथ है, वालेकुम असलम जी कहते हैं, कैसे भाई को वेलकम। कई प्यारा गाना एंजॉय करें साथ, जितने भी लोग मौजूद है वो सारे लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे जनाब, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको वो खूबसूरती मिल रही है जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप जरा अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए, लेने में आसानी हो जाएगी ना, ये इसलिए कहती हूँ। तो जो नंबर आपको प्रोग्राम के ऊपर जरा रब्ता कीजिएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए। अच्छा मोहम्मद अली खोसु भाई और बाबल खोस और साजिद भाई हो जाए निभा सको, वरना क्या बात है जी, बहुत चल रहा हो है, क्या बात कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बेहतरीन है, हमने यूज की है जिस ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो एंड सोना थी वजह।

आप भी मैजिक दिखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, ऐसा निखार मिलेगा कि आपको क्या बात है क्या बात है। ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है, तो इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए। प्लीज इकबाल से आप हमारा शो सुने। न्याज बेटी कहे वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अदर। अच्छा मटियारी खान तमा सा के जॉइन करवाए भांजू मोहब्बत वाइन तमाम मोहब्बत सा सने प्रोग्राम बुदन आयो, सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा चाचा कहते हैं तो के खबर आ चाचा गानन जो शौकीन आ है तो गाना प्ले कर। अच्छा ठीक आ मां डी स्किन ब्यूटी क्रीम सेल करा तो चले अच्छी बात है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप परचेज कीजिएगा। और उनका अलावा एसन कहते हैं मेरे कमेंट से हाँ हाँ अच्छी बात है अच्छी बात है। चाचा कहते हैं डी से मचा दिए हाउ राइ नासी मोहब्बत प्रोग्राम दो थैंक यू सो मच। निजाम को बोलिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें ठीक है, तारीफ हो मैं भी टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है। ओके तो प्रोग्राम में साथ रहिए और सुनती रहिए हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर टाइम हुआ है जनाब हम जाएंगे न्यूज ब्रेक की जाने, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास। सुनती रहिए और हमारा साथ दीजिए क्योंकि आप

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें हो रही हैं, क्यों ना हो जनाब, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है आपको इतने खूबसूरत इतनी हसीन और इतने जाजबी नजर बनाने वाले हैं कि जब आपको दुनिया देखेगी तो आपसे पूछेगी कि बताएं तो जरा आपकी खूबसूरती का क्या राज है और आप उन्हें बताइएगा जनाब बेफिक्र करके ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुकी है तो बस जाइए और परचेज कीजिए। मुझे बताया करें कि डी स्किन ब्यूटी करीबी जनरल स्टोर्स

अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक हो गया आपका। ओके जी, तो क्रीम के बारे में बता रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी सी बेसिक सी चीजें तो मैंने आप लोगों को बता दी कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिकाए ही विटामिन ई बी का अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिको है अगर निशानी जे तौर ते तमा वणियो था ताकि खबर ना आए डी स्किन ब्यूटी क्रीम की असा परचेस करें यानी कि तमा के दुकानदार चूनो लगाएं था तो तमा उल्टो दुकानदार के चूनो लगायो बाबा तां उनके चओ तो बाबा असा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी खबर आए डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथा डॉक्टर माई जो फोटो आए। ठीक है, अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा परचेस करण वणियो था तो या निशानी सफा इनफ आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथा डॉक्टर माई जो फोटो आहे सफा या निशानी तव्हां खे अगर खबर हूंदी न त पोइ तव्हां वेंदा त तव्हां आराम सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेस करे ईंदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां के ॻोठ में आयो तव्हां के शहर में आयो हर जॻह ते तव्हां वञी आराम सां जेको आहे न परचेस करे सघो था। पर हिकड़ी इहा बि ॻाल्हि आहे अगरि तव्हांजे करे बि जनरल स्टोर ते अवेलेबल न आहे त तव्हां खे जेके नंबर ॿुधाया वञनि था हुन नंबर ते राबितो करे तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल बि कराए सघो था। ओके जी, तो खूबसूरती तो हम लोग सारे लोग ही चाहते कि भई हमें खूबसूरती मिलनी चाहिए। ये जो चेहरे पे निशानात हैं, ये रिंकल्स हैं या फिर अपनी उम्र से बहुत बड़े लगना हम स्टार्ट हो चुके हैं, ये सब इस वजह से होता है क्योंकि आप अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखते हैं और चेहरे का ख्याल ना रखा जाए मुनासिब जाए तो भई आपकी चेहरे की डल होने लग जाती है, आपके चेहरे की स्किन मुरझाने लग जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं भई खूबसूरती हमें कैसे भी करके अब हासिल करनी है क्योंकि और ये तरह तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट से आप बेजार हो चुके हैं, तो आपके लिए आसान सा प्रोडक्ट जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। तो सबसे बेहतरीन बात कि ये मेडिकेटेड फार्मूला है यानी कि जो डॉक्टर्स होते ना स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स उन्होंने मिलकर ये फार्मूला तैयार किया गया है और ये इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई हम वाकई कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश है लेकिन खूबसूरत के साथ ऐसा होता है ना, खूबसूरती के साथ साथ आपकी जल्दी जो होती है वो एक अच्छी सी केयर भी जा रही होती है और जरूरी यही हो जाता है कि आप अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत इजाफा करें और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी रूटीन का हिस्सा जब आप बना लेंगे ना तो ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन इंतखाब वो हो जाएगी। तो आप अपने चेहरे खूबसूरत खूबसूरत रहे या ग्लो में रहना चाहते हैं तो डी स्किन माल आप लोगों के लिए है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल ये बात बड़ी मजे की और कमाल की बताने लगी हूँ कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को सिर्फ खवातीन इस्तेमाल करेंगी, आप मर्द हजरात भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों की स्किन से रिलेटेड है जनाब। सारे लोग इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरती का जरा फायदा उठाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते जाइए। और साथ में आप लोगों के लिए डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल हो चुका है और फेस वॉश अगर बात की जाए तो फेस वॉश भी कमाल का और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है और ये जो सीरम होता है ना ये इतना कमाल का होता है आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को हमेशा के लिए क्लीन और खूबसूरत बना देता है। और दिन भर की मसरूफियात के बाद जब चेहरे पर थकन और ये तमाम गर्द गुबार आपके चेहरे पर आ जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा ऑयल आपके चेहरे पर जमा हो जाता है और ये सब चीजें जब हद से ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं तो आपको चाहिए एक ऐसा फेस वॉश जो आपके इन तमाम चीजों को क्लीन कर दे, आपके दिन भर की ये जो गंदगी है उसे साफ करके आपकी स्किन को एक अच्छा सा लुक दे दे। तो डी स्किन का फेस वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके चेहरे को साफ और फ्रेश रखने के लिए, रोजाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं और रोजाना इस्तेमाल से मुराद यही है कि आप डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये दिन में 3 से 4 मरतबा लगाइएगा। ठीक है, यानी कि सुबह को लगाया, दोपहर को लगाया, शाम को लगाया और रात को सोने से पहले तो फेस वॉश लाजमी किया कीजिए। रात को फेस वॉश जो होता है ना वो बहुत सारे जल्द के मसाइल से आपको दूर रखता है, तो रात का फेस वॉश मतलब अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए और डी स्किन का फेस वॉश यूज करते रहिए। सुबह के वक्त लगाएं या दिन में लगाएं या रात में लगाएं, हर वक्त जब भी आप एहसास होगा इतना अच्छा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आपके एरिया में अवेलेबल हो चुका है तो जनाब डी स्किन का फेस करते रहिए, खूबसूरत खूबसूरत रही आयो था उन्होंने पर आई जनरी 8093 74 209 नंबर आहे 03 907 12 50 25 970। सो ही नंबर आहिनि जेके डायल करे तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश खे अवेलेबल कराए सघो था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे ऐं छुजे लॻाईंदड़ उहो बाबा खूबसूरती हाणे तव्हांजे पोयां पोयां ईंदी। सो खूबसूरत रहण चाहियो था ऐं खूबसूरती खे वेलकम करणु चाहियो था त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश खां बिना त तव्हांखे खूबसूरती मिलंदी कोन। सो वञो बाबा वठी अचो ऐं खूबसूरत खूबसूरत रहो, खूबसूरतियां अब बहुत ज्यादा आसान हो चुके हैं। तो हुन खां अलावा तव्हां टॉपिक ते भी ॻाल्हाईंदा वञो था, टॉपिक खे फॉलो कंदा वञो था, असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा वञो बाबा, पंहिंजे हुजण जो सबूत ॾियो, तव्हां ज़िंदा आहियो मूंखे ख़बर हुजणु घुर्जे ऐं पैनल ते अगरि नज़र

बाबू जी सो ये हमारे साथ है नेक मोहम्मद पालारी फ्रॉम नूरियाबाद, कहते हैं बाजी सदरा मुस्कान आपके शो की क्या ही बात है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपकी मोहब्बतें होती हैं। मीरपुर खान से अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही, वालेकुम असलम। और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और चाचा खालिद भी हमारे साथ पैनल पर मौजूद है, और पैनल से तमाम टॉपिक जो जवाब देना हुआ है, ठीक है जी, ठीक है। और ये हमारे साथ मौजूद है सलाम सडो बाजी, मुझे लगता है हकीकत में जी जी भाई आपको बिल्कुल सही लगता है और आपने आगे क्या लिखा है, चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ है फिरदोस मोरोज, थैंक यू वेरी मच फिरदोस भाई, आपको वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ ही चाचा खाले तमाम गाने जी फरमाइश कही, ठीक है जी। अच्छा फिरदोस भाई सागो मैसेज तमाम दोबारा शेयर करे छो आए सोने जिला भी मोहब्बत हूँ तमाम जो लख लख थोड़ा तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर कौन मुख्य बुधाए जो। और ये हमारे साथ ही भाई मैं जो भी हूँ पर एक बात की हम यूजर है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के, तो हम लगा दो का सॉन्ग है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, थैंक्स शो।

फजली हमारे साथ है, फजली के दी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सदरा मुस्कान, कैसी हो जानू? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? चलिए सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम और कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। ओके जी, ओके। और ये भाई साहब लिखते हैं, हेलो सिद्रा आपी, हेलो टू यू। और कामरान भाई हमारे साथ हैं। कामरान भाई आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा। और इन्होंने लिखा है, अच्छा मुनव्वर अली मुगल भाई हमारे साथ हैं मीरपुर खास से, कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी तरह ये जो आगे आपने लिखा ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बस आप भाइयों की मोहब्बतें के मुझे इस काबिल समझते हैं, वरना तो असा इन काबिल का थे बाबा। अच्छा ये मौजूद है, हेलो सिद्रा आपी, मैं जेबुन निसा आंसर आपने दिया है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपको लास्ट में बताया जाएगा कि आपका जवाब सही था या गलत था, ठीक है? जेबुन निसा हमारे साथ है, पर दोस्त नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपकी तबीयत मुझे लग रहा है क्या? और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का

हिकड़ी माण्हू खे ॻाल्हि न वणी शायदि ईअं अच्छा शमन जे गाने जी जिन जी फरमाइश कई न ही गानो उन्हनि सभिनी भाउनि खे डेडिकेट आहे निदड़ी कहती है कि उदास रही आत्मा बन जाते हैं और मैं चालाक बनती जा रही हूँ। सही गाल है ना।

ओके जी निजाम भट्टी भाई वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम और ऐसन कहते लिस्ट में अज थोड़ी जगह छड़े जा असा भी गानो जो गानो हलान जी फुल भाई हमें सुन रहे हैं अखलाक भाई कहते नाइस यू थैंक यू वेरी मच प्यारे अखलाक भाई जान और चाचा कहते हैं अच्छा कहते हैं आपके शो को मैंने इंडिया में भी शेयर कर दिया बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया।

अच्छा दर्द दिल आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है स्वीटी। निदड़ी कहती है कि मैंने ख्वाब में एक दोस्त तो इसे उसकी शादी होगी, फिर शादी होगी उस। भाई कुछ ख्वाब सच्चे होते हैं, तुम जो भी सच्चे हो।

सिद्धार्थ तो लगे थे तेरे प्रोग्राम में नाचेंगे नाचो। अच्छा निदली कौन सा गाना था उस टाइम, पता नहीं कौन सा गाना चल रहा था, बताओ मुझे तो जरा नाम बताओ। इतने प्यारे ना जाने इतने मगरूर क्यों हो जाते। वैल्यू आप हमारे साथ इंडीज़ स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कौन कौन कर रहा है, हाथों मत क्यों।

हाँ टाइम बुधा चूं था बस पंद्रह में आयो ऐसा कहते हैं टाइम तुम्हें तो पता है इंतजार मौत बराबर आहा बाबा सही था चो सही था चो और कहते हैं सॉन्ग का मास्टर मंजूर जो ऐसा यो गानों अगर है ना प्रोग्राम

0: मम्मी हली वियो त ठीक आहे न त असां 5 बजे वारे प्रोग्राम में सुकून सां ॿुधंदासीं सही
1: आहे
0: भाऊ मैडम ने डी स्किन ब्यूटी क्रीम खरीदी है रात उसने फोटो निकाल कर भेजा था वाह सही वाह डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सवा सोना सोना अच्छा फरवा तव्हां खे प्रोग्राम वणे थो थैंक यू सो मच तव्हां वैसे गाने जी फरमाइश कई छा मूंखे मिलियो त कोन तव्हांजो गानो ॾिसी वठूं था तव्हांजो गानो आहे त हलाए वठूं था ऐसन कंहिं ते असां दुकान वारे खे चूनो कीअं लॻाईंदा हूं ख़बर इहा क्रीम रख न मिली त इहा सीन
1: हा
0: अच्छा लाडकाना में आज गर्मी कुझु बहितर है हा कुझु बहितरी अची वई आहे

0: डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कबो कबो कबो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कबो तां भी सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो बाबा। अच्छा फरवा की दिया भी सारे ख्वाब पूरी नहीं होते लेकिन कुछ तो होते हैं। अच्छा हाथ में गुलाब वरी की है जो याद अच्छी वही चलें जी यहाँ पर टाइम हुआ है हम जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानम जाते हैं वरना हंसा हंसा के मेरी हालत बुरी कर देंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना यहीं पर मौजूद रहिएगा। मैं यूं जाकर यूं वापस आते हूँ। सोसाइटी ने स्टे कनेक्टेड इन कीप लिसनिंग वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधर रहो उधर।
2: इट्स 2:30 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
6: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
7: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
8: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

प्यारा प्यारा बनाने वाली है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपको बहुत ही अच्छा साबित कर देगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप मर्द हसरात हैं, खवातीन हर कोई यूज कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल है, तो आप दोनों चीजें साथ में परचेज कीजिएगा। यूज करते रहिए और जरा अपने चेहरे का ख्याल रखिए। और इसके साथ साथ नंबर्स के ऊपर रابطہ करते रहिए जो कि आप लोगों को पूरे प्रोग्राम में बताए जाते हैं। अच्छा, तो आप लोगों के मैसेजेस बिल्कुल रीड आउट रखे जाएंगे, आप लोगों के साथ बातें भी होती जा रही है। और अगर आप गाने भी सुनना चाहते हैं तो गानों की फरमाइशें थोड़ी वैसे कम ही रखा करें। और बाकी जिन लोगों के गाने आज के प्रोग्राम में रह जाएंगे तो हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुन लेंगे या फिर कल सुन लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने लिस्ट में लगा लिया है। जयपाल भाई जाने फरमाइश कर दी थी हीरो जड़ो अच्छो, यही गानो उन्हें मानन की डेडिकेट है जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कर पाया। सो अमां भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करो, सोना सोना थे खूबसूरती हासिल करो।

ओके जी, अनवर भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं उस्ताद बुखारी तो में आहे नाज आहिन, तो में उहे नाज आहिन, तो में उहे अंदाज आहिन, जिन लाइ असां जो दिलियूं सदक ऐं नियाज आहिन, ज़ुल्फन खे न लोड इहे वाव में मिठा, केतिरा ई दिलन जा हिते राज ऐं नियाज आहिन। वाह वाह वाह वाह, शायद सही रीड कर ली मैंने। अच्छा, उन खां अलावा फहीम कहते भाऊ आपने खोला है क्या बातें जी, अच्छी बात है, चलिए अब दुकान खोलीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसमें मिलती हो। अच्छा, रमजान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम।

क्या बात, सुरेश सा गाना। हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं चाहे आप ड्रामा देखे या ना देखे, लेकिन गाना हुआ आपको अच्छा लगे, एंजॉय किया। और साथ ही साथ अगर आप डी यूज कर रहे हैं नहीं दोस्तों को जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहे। जयपाल भाई का पूरा गाना सुनना चाहते हैं तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में फरमाइश किया करें। और हिदायतुल्लाह कहते हाय ये ड्रामा इतना अच्छा है, सच्ची बताए। किशोर भाई कहते अदा मोमट कोई मसलो ना है, बाकी अगर मुखे खबर पई हिता को मसलो आ तो पो सुठो न थींदो, आ रोड ते वेही रहंदस पो जेको थियो। हिता की मसलो थी सके तो बेन मानो जा कमेंट अचन था तमा सई मतलब प्रॉब्लम हुदो त यो क्यों तो थी सके न अचन मतलब सफा न अचन वरी प्रोग्राम जो लास्ट में अचन कमेंट स्टार्ट थियन था अलाई छा गाल आए गाल थोड़ी मतलब समझ में कौन पी अचे मां डसी वेठां थी प्रॉब्लम समझ में अचियो तो थोड़ो हल करे वेठूंदा ठीक है।

जयपाल भाई वो बस ऐसे ही हवा में तीर मारा था मैंने। अच्छा जिब्रान, वैसे 2-3 सालों के बाद आप प्रोग्राम में आए हैं तो जाहिर सी बात है भाई इंसान थोड़ा चेंज हो जाता है ना। वैसा मेरा वाकई मूड नहीं रहा जैसा मेरा पहले हुआ करता था, तो बहुत सारी जिंदगी में तब्दीलियां आ जाती है, इंसान थोड़ा मैच्योर हो जाता है, संजीदा भी हो जाता है। मेरा वही वाला फेज चल रहा है। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ थोड़ा सा कर लेती हूँ, पहले पता नहीं क्या करती थी।

ओके जी, अली मोहम्मद भाई आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। किशोर भाई कहते हैं कि अदा अगर एक रूम में 100 लोग बैठे हैं, उनमें से 99 लोग हमारे खिलाफ हो और एक मेरे साथ, तो मैं उस एक पर तवज्जो देता हूँ और ये बात रूम के लिए नहीं थी। आई नो किसके लिए थी। मैं भी दरअसल ऐसी ही हूँ। और ये आपकी बात आपको इसलिए सबसे अलग बताती है। क्रीम भी लगाएं, ठीक है, ताकि आप खूबसूरत भी हो जाए। मजीद खूबसूरत हो जाए। साथ ही इजाजत पंच बजे वाले प्रोग्रामों में थी, गलती थी, तो माजरत कहूँ था। सुमुकलानी ना ही बाबू, सिंह सलामत, सास सलामत, पांचो ओ हिंदू सरो ख्याल रख जो। So, Allah Hafiz, bye-bye, love you all.

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान

0: पीटीआई बानी जे अस्पताल मुंतकिली वारे केस जी बुधनी आईनी अदालत जे हुकुम ते अटॉर्नी जनरल का मुआविनत तलब जस्टिस शाहिद वहीद रिमार्क्स डींदे चयो आहे त आईन जी तशरीह खां सवाइ समूरा मामला सुप्रीम कोर्ट वटि आहिनि। जेको आर्डर आईनी अदालत कयो आहे छा उहो असां ते लागू थिए थो? आईनी अदालत ऐं सुप्रीम कोर्ट जा इख़्तियार आईन में वाज़े आहिनि। अडियाला जेल इंतिज़ामिया खे ज़ाती हैसियत में तलब कयो हो आफिसरनि मां को बि पेश न आहे थियो। छा जेल सुप्रिंटेंडेंट जा वारंट जारी कयूं? वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि पिम्स बाबति इजलास 3 महीननि अंदरि पिम्स खे आलमी मयार जो बणाए सुधाराइण जो हुकुम। फायर सेफ्टी निज़ाम बाबति पी के एल आई खां मदद वठण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त जांच कमेटी जी सिफारिशुनि ते 3 महीननि अंदरि अमल करे अस्पताल खे आलमी मयार मूजिब बहितर बणायो वञे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि पोलियो टास्क फोर्स जो इजलास। सूबाई वज़ीर डॉक्टर अज़रा पेचुओ, चीफ सेक्रेटरी मेयर कराची आई जी सिंध ऐं ॿिया शरीक थिया। मुराद अली शाह चयो आहे त हर ॿार खे पोलियो खां बचाइण असांजी ज़िमेवारी आहे। पोलियो मुहिम लाइ माली मदद जारी रहंदी, कोताही कंदड़नि ख़िलाफ़ बि कार्रवाई थींदी। जमायत इस्लामी इम्कानी लॉकडाउन खे रद्द करे छॾियो। पेट्रोल तां लेवी ख़तम करण वारो मुतालबो बरक़रार। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त जमायत इस्लामी जा धरणा जारी आहिनि ऐं जारी रहंदा। हिकु ई मुतालबो आहे त पेट्रोल ते लॻायल लेवी ख़तम कई वञे। इताद ऐं सिंध आवाज़गार इताद जो मुतालबनि जी मंटा लाइ 25 सेप्टेम्बर ते इस्लामाबाद में हारी मार्च जो ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे आवाज़गार माण्हुनि चयो आहे त कम जे फी मण क़ीमत 650 रूपया मुक़ररु कई वञे। कम जी वक़्त ते कराइण खे यकीनी बणायो वञे। पटाटा बसर ऐं टमाटा पोखींदड़ आबादगार सख़्त परेशान आहिनि। अफ़गानिस्तान ऐं रूस खां गैर क़ानूनी दरामदाद रोकियो वञे। सिंध तास मुआदे ते अमल खे बि यकीनी बणायो वञे। नौशेरो फिरोज में हाज़िरी ते अदालत वेंदड़ शख़्स क़तल। रोड़ी के नाल पुल हथियारबंदनि मोहम्मद मिठल मंगसे खे गोलियूं हणी क़तल कयो। पुलिस मूजिबि मक़तूल घोट पीरवतियो जो रहवासी आहे। मामिलो पुराणे तकरार जो लॻी रहियो। जांच कई पई वञे कि प्रो वेझो ज़रदारी फार्म वटां ताहिं लाश जी सुञाणप शहज़ाद मरीज़ जे नाले सां थी वई। पुलिस करे रहिया आहिनि। कान जा वण में टया आहिनि। घोट सोराचंद में कृष्ण ऐं नालीअ जा वण में टंगियल लाश मिलिया आहिनि। इलाइक़े में चोक गोल आहिनि त नारी ऐं नौजवान हिक ॿिए खे पसंदि कंदा हुआ। परणो न थियण सबबि गॾिजी आपघात कयो आहे। पुलिस लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले करे छॾिया। देरकीअ मां 10 ॾींहं अॻु मुबैना तौरु अॻवा थियल 14 उमिरनि जी नारी पंजाब मां बाज़ियाब। मंज़ूरा खोसो खे डेरकी पुलिस पंजाब जे सादकाबाद मां बाज़ियाब करायो। मंज़ूरा खोसो मूजिबि असलम कोच समेत जवाबदारनि हथियारनि जे ज़ोर ते खेस अॻवा कयो हो। पुलिस मूजिबि वाके में मुलविस जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। कलोई वेझो सीआई पुलिस थरपारकर जो छापो। मंशा हेठि हिकु ॼणो गिरफ़्तार ते कार्रवाई कंदे गिरफ़्तार कयो। हाला बिरादरी कराए वरितो। पुलिस चढ़ाई ख़िलाफ़ तरकोट रोड ते धरणो। जेकमाबाद में 12 वरनि जी निंगड़ीअ सां मुबैना ज़्याती। ॻोठु अब्दुल अज़ीज़ खारणीअ में जवाबदार मुबैना तौरु 12 जिन्सी ज़्याती जो निशानो बणायो। निंगड़ीअ जे चाचे जो सौर ते इल्ज़ाम। 12 वरनि जी निंगर सां हिते जवाबदार अमृत के हथियारनि जे ज़ोर ते बदफेल जो निशानो बणायो। पुलिस निंगर खे मेडिकल लेटर ॾेई अस्पताल मुंतकिल कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रूपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां ख़मीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 03

0: 06 244 77 00।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले के साथ स्किन का बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर
1: 91.3 डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली गेजोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: बाय
4: ग्रेनुलर मिट्टी जो माँ
5: What options are considered legitimate acts that originate from across the border there in Afghanistan?
6: Right of self-defense is enshrined in the Article 51 of the United Nations. Right of self-defense is given. It is being waged and how it is being waged. And we will continue that. And we are effectively doing that. And the world is seeing it. We are continuing on the path of the counter-terrorism campaign that the Pakistan has waged, is waging since last two decades. It is the only successful counter-terrorism campaign in the world. Because we are the bulwark state against this global terrorism central that is coming from Afghanistan. Who's fighting it on a daily basis? It's the people of Pakistan. Law leaders on daily basis. 42,000 intelligence.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
7: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
8: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: 4:30 PM दिस टाइम चेक यू बाय
1: माइनस हो सारी टेंशन जब हो आपके पास Zong 4J की प्लस ऑफर लेट्स गेट दिस Zong 4J
2: खूबसूरती का सिर्फ में मौजूद विटामिन ई बी फॉर्मूला

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर रहो। अभी बुधो प्यार, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई, पिता देव से नूर मुझो तो।
0: सिंध जो आवाज, उधर रहो।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you
1: by Beauty King by International Pakistan.
2: GAFM Network पर KTN News.
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी
4: आंसर जमीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल न थियल घुर्जे. भारत पंहिंजी फौजी ताकत में इज़ाफ़े लाइ पाकिस्तान जी दिफ़ाई सलाहियत जो मक़सदु सिर्फ़ मुल्की दिफ़ा आहे. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां मके ते ड्रोन हमले वारी कोशिश जी मुज़म्मत, चिड़ ॾियारींदड़ क़दमनि ते अफ़सोस ऐं डुख जो इज़हार. दुरियल खे सबर खां कम वठण जी अपील. शहबाज़ शरीफ़ चयो त मके ते हमले वारी किरियल कोशिश माफ़ करण जोगी नाहे. हरम जे तहफ़ुज़ लाइ पाकिस्तानी क़ौम सऊदी अरब सां कुलो कुले में मिलाए बीठल आहे. असांजो ख़ितो तकरारनि जी ॻरी क़ीमत अदा करे रहियो आहे. दुरियूं सबर जो मुज़ाहिरो कनि ऐं वधीक चिकरण खां पासो कनि. हुसियन जूं सऊदी अरब ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं जारी. सऊदी अरब पारां फज़ाई हदनि में दाख़िल थींदड़ ड्रोन तबाह करण जी दावा. सऊदी फौजी तहत जो चवण हदनि में तबाह कयो वियो. हुसियन पारां मके ते हमले वारे इल्ज़ाम जी तरदीद. पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाइ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमालु थी रही आहे. टेरर कराए नेटवर्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाइ सहूलियतूं फराहम करे रहियो आहे. मुल्कती वज़ीर साबितियूं दुनिया खे तलाल चौधरी चयो आहे.

अस्पताल के आलमी मयार बने। जमायत इस्लामी इम्कानी लॉकडाउन के रद्द कर पेट्रोल तां लेवी खत्म करण वारो मुतालबो बरकरार। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे जमायत इस्लामी के अमीर हाफिज नईम है जमायत इस्लामी जा धरना जारी है ना जारी रहंदा। एक ही मुतालबो है पेट्रोल ते लगा लेवी खत्म कई वे। लाड़कड़े में पीपल्स पार्टी जो सिंध धरती माओ है जे उनवान हेठ सेमिनार। पीपी सिंध जो सदर निसार खोड़ो सेनेटर जमीर गुमरो बिया शरीक। एजाज जखराणी कौमी असेंबली या सेनेट में सिंध के इम्कानी विरागे वाली रेथ कदें भी पास थियण न दींदासीं। सिंध विरहण की गाल करण खां अग पीपी के खत्म करण त बी गाल आहे। उन खां अग सिंध जो विरागो न थींदो। एम एन ए गुल मोहम्मद जखराणी चयो त सिंध पाकिस्तान जे खिलाफ आहे। 1971 में शहीद भुट्टो पाकिस्तान के संभालियो। एम एन ए खुर्शीद जोड़े जे चयो त सिंध के विरायो वियो त बलोचिस्तान खां वधीक हिते हालतूं ख़राब थींदियूं। असां सिंध जे विरागे ते कंहिं बि सूरत को समझौतो न कंदासीं। सिंध जे इम्कानी विरागे ख़िलाफ़ वकीलनि जो मलिक खां प्रेस क्लब ताईं मार्च। मार्च में कराची बार एसोसिएशन जो सदर आमिर नवाज़ बड़ायत अशरफ समूह असद रज़ा रिंद ऐं ॿिया शरीक। आमिर नवाज़ बड़ायत अशरफ समूह ऐं ॿियनि जो चवण आहे त सिंध जी विरासत कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। सिंध असांजी माउ आहे। सिंध सदियुनि खां

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 6 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
5: ना है हरम जी तहफुज लाए पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब से कुलो कुल्हे में मिलाए बीठल है असो खितो तकरार की गरी कीमत अदा कर रो है धुरियो सब्र जो मुजाहरों कन चिकताण का पासो कन

अमरीकी कांग्रेस ईरान जंग जी खात्मे बाबत ठहराव टियों भेरों पे मंजूर करे वरतो। ठहराव जी हिमायत में 220 वोट पया, 204 मुखालफत में वोट कयो। सदर ट्रंप जी रिपब्लिकन पार्टी जे 7 मेंबर्स भी ठहराव जी हिमायत कई। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त ईरान जंग जल्द नए मरहले में दाखिल थी वेंदी। ईरान जंग जो पहिरों मरहलो ईरानी एटमी प्रोग्राम ऐं फौज जी तबाही हो, जेको मुकमल करे छॾियो आहे। ॿिए मरहले ईरान खे बहालीअ खां रोकण वारो आहे, जंहिं ते अमल कयो वेंदो। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई बानी जी अस्पताल मुंतकिली वारी केस जी ॿुधणी, आईनी अदालत जे हुकुम ते अटॉर्नी जनरल खां मुआवनत तलब। जस्टिस शाहिद वहीद रिमार्क्स ॾींदे चयो त आईन जी तशरीह खां सवाइ समूरा मामला सुप्रीम कोर्ट वटि आहिनि। जेको आर्डर आईनी अदालत कयो आहे, छा उहो असां ते लागू थिए थो? आईनी अदालत ऐं सुप्रीम कोर्ट जा अख़्तियार आईन में वाज़े आहिनि। अडियाला जेल इंतिज़ामिया खे

0: सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ वकीलन जो मली रखा प्रेस क्लब तई मार्च। मार्च में कराची बार एसोसिएशन जो सदर आमिर नवाज वड़ाइच, अशरफ समो, नासिर रजा रिंद बिया शरीक। आमिर नवाज वड़ाइच, अशरफ समो बेन जो चवण हो तो सिंध की विरासत कें भी सूरत में कबूल ना। सिंध असांजी माउ आहे, सिंध सदियुनि खां कायम आहे ऐं कायम रहंदी। सिंध जे कचे वारनि इलाइक़नि मां सरकारी ज़मीननि तां कब्ज़ा ख़तम करण जो फ़ैसिलो। पहिरीं मरहले में 50 एकड़ या उन खां वधीक ज़मीन ते कब्ज़ो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई जी हिदायत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जे अख़्तियारनि जो हैदराबाद, सखर, घोटकी, कंबर, शादादकोट, शिकारपुर समेत 15 ज़िलनि जे डेप्टी कमिश्नर्स खे ख़त लिखी चयो आहे त सिंध काबीना जे फ़ैसिले ते अमल खे यकीनी बणाईंदे कचे में सरकारी ज़मीननि तां कब्ज़ा ख़तम कराया वञनि। मीर रज़ा कतल केस जी जांच रिपोर्ट सेनेट जे इंसानी हक़नि वारी कमेटीअ में पेश। एडिशनल आईजी कराची मीर रज़ा केस जी रिपोर्ट पेश कई। रिपोर्ट में 27 सुफ़नि ते ॿधल जांच जा तफ़सील बि शामिल। 26 जुलाई खां हिन वक़्त ताईं थियल जांच जो ज़िक्र बि कयो वियो। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त मीर रज़ा राइड किराए ऐं पंहिंजी ज़ाती इस्तेमाल हेठि गाॾी ऐं मोटरसाइकिल घर छॾे वियो हो। मीर रज़ा जी गुमशुदगी बाबति संदसि वालिद थाणे फिरोज़ाबाद में रिपोर्ट दाख़िल कराई हुई। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ़ शागिर्दनि जी मरण घड़ी ताईं भुख हड़ताल जारी। एसयूपी सरबराह सैयद ज़ैन शाह खां पोइ जूनियर ज़ुल्फ़िकार बि एहतजाजी कैंप ते पहुतो। शागिर्दनि सां ॿधीअ जो इज़हार कंदे शागिर्दनि खे भुख हड़ताल ख़तम करण जी दरख़्वास्त कई वई। सैयद ज़ैन शाह चयो त मुल्क में इंसाफ़ नाले का बि शइ नाहे। सिंध जा नौजवान जेके सूबे जो मुस्तक़बिल आहिनि उन्हनि सां अहिड़ी नाइंसाफ़ी मज़म्मत जोगी आहे। इन मुल्क में इंसाफ़ नाले का शइ नाहे। शागिर्द भुख हड़ताल ख़तम कनि। किसान इतिहाद ऐं सिंध आबादगार इतिहाद जो मुतालबनि जी मञता लाइ 25 सेप्टेम्बर ते इस्लामाबाद में हारी मार्च जो ऐलान। कराचीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे आबादगार अॻवाननि जो चवण हो त कमनि जी फी मण क़ीमत 650 रुपया मुक़रर कई वञे। कमनि जी क्रेशिंग बि वक़्त ते करण खे यकीनी बणायो वञे। पटाटा, बसर ऐं टमाटा पोखींदड़ आबादगार सख़्त परेशान आहिनि। अफ़गानिस्तान ऐं रूस खां गैर क़ानूनी दरामदाद रोकियो वञनि। सिंतास मुआदे ते अमल खे बि यकीनी बणायो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है।

0: सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो ले।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.5।
1: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दुरियो सबर जो ज़ाहिर कन ऐं वधीक छुटकार खां पासो कन। सीएम जूं सऊदी अरब ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं जारी। सऊदी अरब पारां फज़ाई हदनि में दाख़िल थींदड़ ड्रोन तबाह करण जी दावा। सीएम जे ड्रोन खे मके जी फज़ाई हदनि में तबाह कयो वियो। सीएम पारां मके ते हमले वारे इल्ज़ाम जी तरदीद। पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाइ अफ़ग़ान सरज़मीन इस्तेमाल थी रही आहे। टेरर कराए नेटवर्क पाकिस्तान में दहशतगर्दीअ लाइ सहूलियतूं फ़राहम करे रहियो आहे। घरू मामलनि बाबति मुमलकते वधीक साबितियूं दुनिया खे ॾेखारे छॾियूं। तलाल चौधरी चयो आहे त ॻुझे ऑपरेशन दौरान आज़ाद कश्मीर वासी ज़िया नाले शख़्स खे गिरफ़्तार कयो, जंहिं वटि दहशतगर्दनि जी गठजोड़ जूं साबितियूं मिलियूं आहिनि। दहशतगर्दनि खे पडे॒ही क़ुवतूं मदद ॾेई रहियूं आहिनि। एक्शन कमेटी ते साबितियुनि बाद पाबंदी लॻाई। ईरानी परडे॒ही वज़ीर जी बीजिंग में चीनी हमनसब सां मुलाक़ात। बेतरफ़न लाॻापन समेत ख़ते जी तब्दील थींदड़ सूरतयाल ते ॻाल्हि ॿोल्हि। चीनी परडे॒ही वज़ीर चयो त बीजिंग ख़ते में वधीक छिकाइण नथो चाहे। अमरीका ऐं ईरान इस्लामाबाद मुफ़ाहमत तहत तय थियल मामलनि ते अमल कंदे ॻाल्हियूं शुरू कनि। तकरार कंहिं बि दुख जे मफ़ाद में नाहे। अमरीकी कांग्रेस ईरान जंग जे खात्मे बाबति ठहराउ टियों भेरो बि मंज़ूर करे वरितो। ठहराउ जी हिमायत में 220 वोट पिया, 204 मुखालफ़त ते वोट कयो। सदर ट्रंप जी रिपब्लिकन पार्टी जे 7 मेंबर्स बि ठहराउ जी हिमायत कई। अमरीकी

सदर जी जेडी वेंस चयो आहे त ईरान जंग जल्द नई मरहले में दाखिल थी वेंदी। ईरान जंग जो पहिरियों मरहलो ईरानी एटमी प्रोग्राम ऐं फौज जी तबाही हो जेको मुकमल करे छॾियो आहे। बियो मरहलो ईरान खे बहाली खां रोकण वारो आहे जंहिं ते अमल कयो वेंदो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं। आखरा चेहरा White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए।
3: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां दिफाई ऐं अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जे शोबन में ख़िदमतूं फराहम कंदड़ अमरीकी कंपनी जे वफ़द जी मुलाकात, गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि ऐं दिफ़ाई टेक्नोलॉजी जे तब्दील थींदड़ रुझाननि ते ख़्यालनि जी ॾे वठ, दिफ़ाई सामान जी ख़रीदारी ऐं पैदावार वधाइण जे शोबनि में सहकार जे इम्काननि ते बि ॻाल्हियूं कयूं वयूं। गॾियल दिलचस्पी जे शोबनि में सहकार ऐं राब्तनि खे वधीक अथी ॾियण ते बि दिलचस्पीअ जो इज़हार। फील्ड मार्शल जो क़ौमी सलामती ऐं मुल्की इस्तेहकाम खे मज़बूत बणाइण में टेक्नीकी जिदत जी अहमियत ते ज़ोर भरींदे चयो त जदीद टेक्नोलॉजी ऐं जिदत क़ौमी सलामती तोड़े इस्तेहकाम लाइ अहम आहे।

मका मुआदे में शामिल कंहिं बि मुल्क ते हमिलो थियो त टेई मुल्क गॾियल फ़ैसिलो कंदा। मका दिफ़ाई मुआदो जारहाणो न पर दिफ़ाई नोयत जो आहे। दिफ़ाई वाइदनि जा ऑपरेशनल तफ़सील अवामी सतह ते नाहिनि ॿुधाया वेंदा। डीजी एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी अरब टीवीअ खे इंटरव्यू ॾींदे वधीक चयो त कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ असांजा इरादा जारहाणा न आहिनि। दिफ़ाई सलाहियतुनि ते भरोसो आहे। दिफ़ा करण सां गॾु सज़ा ॾियण जी बि सघ रखूं था। अफ़ग़ानिस्तान बाबति बि मौक़िफ़ वाज़े आहे। अफ़ग़ान सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल न थियणु घुर्जे। भारत पंहिंजे फ़ौजी ताक़त में इज़ाफ़े लाइ घणा वसीला ख़र्च करे पियो। पाकिस्तान जे दिफ़ाई सलाहियतुनि जो मक़सदु सिर्फ़ मुल्की दिफ़ा आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां मके ते ड्रोन हमले वारी कोशिश जी मज़म्मत। चिड़ ॾियारींदड़ क़दमनि ते अफ़सोस ऐं डुख जो इज़हार। दुरनि खे सब्र खां कम वठण जी अपील। शहबाज़ शरीफ चयो त मके ते हमले वारी किरियल कोशिश माफ़ करण जोगी न आहे। हरम जे तहफ़ लाइ पाकिस्तानी क़ौम सऊदी अरब सां कुलो कुल्हे में मिलाए बीठल आहे। असांजो खितो तकरारनि जी गरी क़ीमत अदा करे रहियो आहे। धुरियूं सब्र जो मुज़ाहिरो कनि ऐं वधीक छिकताण खां पासो कनि। हुसिन जूं सऊदी अरब ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी। सऊदी अरब पारां फिज़ाई हदुनि में दाख़िल थींदड़ ड्रोन तबाह करण जी दावा। सऊदी फ़ौजी इतिहाद जो चवणु आहे त यमनी हुसिन जे ड्रोन खे मका जे फिज़ाई हदुनि में तबाह कयो वियो। हुसिन पारां मके ते हमले वारे इल्ज़ाम जी तरदीद। ऐं पाकिस्तान में दहशतगर्दीअ लाइ अफ़ग़ान सरज़मीन इस्तेमाल थी रही आहे। टेरर कराए नेटवर्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाइ सहूलियतूं फराहम करे रहियो आहे। घरू मामलनि बाबति ममलकती वज़ीर साबितियूं दुनिया खे ॾेखारे छॾियूं। तलाल चौधरी जो चवण हो त गुजे ऑपरेशन दौरान आज़ाद कश्मीर वासी ज़िया नाले शख़्स खे गिरफ़्तार कयो वियो, जंहिं वटि दहशतगर्दनि जी गठजोड़ जूं

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत ना आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए

0: जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खिते की बनी है आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर
1: जिकल शहबाज
2: उसी खत्ते की बनी है आवाज,
1: जे FM नेटवर्क
2: आवाज।

अचो त गॾिजी हिन ख़ूबसूरत शहर सां गॾु हिकु ख़ूबसूरत गीत ॿुधूं, उन खां पोइ वापसि वरंदासीं।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हैदर बाबा उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज।
1: जिस धड़ है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते
1: FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एक

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क।
3: अब आप सुनेंगे जीए केटीएम,
4: ब्रॉट टू यू बाय
0: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए।
5: मक्का मुआहदे में शामिल कें भी मुल्क ते हमलो थियो त टई मुल्क गॾियल फैसलो कंदा। मक्का मुआहदो जारहणो न पर दिफ़ाई रोई अचो आहे। दिफ़ाई वाइदनि जा ऑपरेशनल तफ़सील अवामी सतह ते नाहिनि ॿुधाया वेंदा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो अरब टीवी खे इंटरव्यू। DGISPR चयो आहे त मुल्क ख़िलाफ़ असांजा इरादा जारहणा न आहिनि। दिफ़ाई सलाहियतनि ते भरोसो आहे। दिफ़ा करण सां गॾु सज़ा ॾियण जी बि संघ रखूं था। अफ़ग़ानिस्तान बाबति बि मौक़िफ़ वाज़े आहे। अफ़ग़ान सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल न थियणु घुर्जे। भारत पंहिंजी फ़ौजी ताक़त घणा वसीला ख़र्च करे पियो। पाकिस्तान जी दिफ़ाई सलाहियतनि जो मक़सदु सिर्फ़ मुल्की दिफ़ा आहे।

मक्के ते हमले वारी किरियल कोशिश माफ करण जोगी ना है। हरम जी तहफ़ुज़ लाइ पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब से कुलो कोले में मिलाए बीठल है। वजीर आजम जो हुसैन के हमले से सख्त रद्द अमल, शहबाज शरीफ चिड़ डियारींदड़ कदम से अफसोस जो जहर कर तो मक्के ते हमले वारी किरियल कोशिश कैम माफी जोगी ना है। असो खितो तकरारन की गरी कीमत अदा कर रो है, दुरन सब्र जो मुजाहरो कन